अंता तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख परंपर करता जी तुद जे बड़ अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निचल करता सोई तुद आपे भाव सोई वरत जी तू आपे कर है सोई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सै का जन होई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू दे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिस नाम कृपा करहे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप भी छोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी अजंत सब तेरा खेल वे जोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जसनो तू जाना हे सोई जन जान हर गुण सद ही आख वखाण जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया

गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया।

0: सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: तुदे आगै अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाउ न जाने मेरा। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाये वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याहे, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास होई सहाये, अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया करनाओ निधावै ताहे, सब थाई होए सहाये, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई होए सहाय, दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके, खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਟ ਕੀਤਾ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ

बारह पंथ सदाए कै गुरमुख गाड़ी राह चलाया। सूरज बारह महा विच ससियर एकत माहे फेराया। बारह सोलह मेल कर ससियर अंदर सूर समाया। बारह तिलक मिटाए कै गुरमुख तिलक निशान चढ़ाया। बारह राशी साध कै सच रास रह रास लुभाया। बारह वन्नी होए कै बारह मासे तोल तुलाया।

जप हर पव जल तरण, जह हर सिमरन पया तह उपाद गत कीनी। वड पागी हर जपना, जन नानक कौ गोर मत दीनी।

काहे विचारो तित कर गावो सहिला। सिमरिहो सिरजनहारो तुम गावो मेरे निरपौ का सुहिला। हउ वारी जित सहिला सदा सुख होए रहाउ। नित नित जीअड़े समालियन देखे गादे मनहार। तेरे दाने कीमत ना पवै तिसदा ते कमन समार। संबत साह लिखिया मिल कर पाव हो तेल। देहो सजने असीसड़िया ज्यों होए साहिब स्यों मेल।

चवरो करे सकल बनराए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत फेरी रहा सह स्ताव नैन नन नैन है तोहे को सह समूरत नना एक तेही सह स्पद विमर्जन एक पद गंध बिन सह स्तव गंध विचलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिस द चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत इस पावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो आन दिनो मोहे आई प्यासा कृपा जल दे नानक सारंको होए जाते तेरे नाय वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पन वड्डा हे कर डंडौत पन वड्डा हे रहाओ साकत हर रा साधना जानिया तनियंतर होमे कंडा हे ज्यो ज्यो चले चुभे दुख पाव है जम काल सह हे सर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाट चलो हर लाहा आगे बसन सोहेला औद कटे दिन सूरे नारे मन गुर मिलका सवारे रहाओ यो संसार विकार संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसहे जगाए पियाए रास अकथ कथा तन जानी

मोक कर संतन की तूरे उदयागी अरदास हमारी जियो पिंड सब कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई मेरा वाहे गुरु साहिब जी अरदास एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइय जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदावे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसाहां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलो जे हे निमा

सर्वशक्ति और निराकार जिसने यह सारा आकार लिया हुआ है, बड़े ही प्यारे वचन श्रवण करोगे, ध्यान देवांगे, ते थोड़ा हृदय की वेदना, हृदय का प्यार लगाओ इस पानी नाल, और भी आनंद आएगा। उच्चियां अवस्थावां दी वचन हन, जिस किसी नूं ऐसा नजर आंदा होवे, जो गुरु नानक कहणगे जह जह देखा तह जोत तुम्हारी, जिसनों किसी नूं गुरमुख वड़पागे प्यारे नूं दिसदी होवेगी वो जोत, उते खिर उठ गया, उते खिजे ही होया है, उसकी खबर मिलती है कि वह है साढ़े, असी उसे दा ही रूप हाँ, सो प्रभ दूर नहीं प्रभ तू है। इसमें आओ प्यार नाल गाइए, हृदय दे विचों हृदय की उमंग, हृदय हृदय की पीड़ा, हृदय के प्यार नाल दिलों गाइए, तेरे जोज बजाना मेरे साहबा, तेरे अचरज कौतक हैं, तू हर जल ते थल ते आकाश हर पासे भरपूर हैं, किते भी कमी नहीं, हर पासे भरिया पिया है, भरिया पिया है, आपे ही समा रहा है। इसमें कोशिश करिए, सानू भी पता चलेगा कि किन्ने आप संत इसन प्यार नाल गाना चाहते हो। एक दो बार आप जी मैं बेनती करा, एक बार दस रहे दो बार बोल दें, जे तेरे चोज बजाना मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, अगेन मेरे तेरे चोज बजाना मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, इस तरह गा के असं जो छड़ांगे तो इन्नी जिहड़ा ये हिस्सा है म्यूजिक के तौर पर, इस दे विच मेरियां बच्चियां, मेरिया भैणां, मेरिया मावां, उन्हां दी जिहड़ी सुर है उन्हां दे उन्हां नूं माफक आउंदी है, उन्हां दे उत्ते सहजे ही सुर लग सकेगा। सिर्फ जदों कहना ना मेरे साहिबा थोड़ा जिहा उच्ची कहना, बाकी तुसीं समझ गए हो मेरा की मतलब है। दो बार दस रहे बोलणगे तो जिस तरह मेरे साइड ते सिंह उच्ची बोलणगे, इदा जिहड़े वीरां दे विच समर्था है, अबिलिटी है, वो उच्ची भी गा सकदे ने। गा के मैनूं दस नूं भी सानूं भी अंदाजा होएगा कि असीं उस तरह गाउणा है जां तुसीं बस थोड़े थोड़े जे ल्यूक वॉर्म जे हल्के हल्के जे गाओगे तो कोई स्वाद वाली गल नहीं, फिर असी अपना ही बिजनेस माइंड करांगे, असी अपना आनंद लवांगे। तो दो बार

Pedro. कोशिश करो, दो बार बोलना है और फिर तुम हो सब राजन के राजा, अब फिर आप गरीब नवाजा, तो फिर एक बार फिर उच्ची बात एक बार कहते समाप्ति होगी, फिर सारे ने चुका।

अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसिय गुरु मल जन्म जन्म दी कटी है सजण सचा पातशाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहु सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ओ श्लोक महला तीजा

दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे अपंगं बेपुते सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु साहिब जी गुरु गरीब निवाज एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्वै प्रसाद स्वये श्रावक शुद्ध समूह सिद्धान के देख फिर कर जोग जति के सुर सुरार्दन शुद्ध सुधाधिक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूं ते एक रति बिनु एक रति के मत मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूद पौन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भूपली बिदन्याप शीस न जात बिचारे ते भय तो कहा पै भूपत अंत काओ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गिजान के सुंदर हिंसती है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बेचारे श्री पत श्री भगवान भजे बिने अंत काओ अंत के धाम सिधारे तीर्थ नाम दया दमदान सुसंजम नेम अनेक विशेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पेखा है पौन आहार जति जत धार सब सो विचार हजार क देखा है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिनु एक ना लेख है शुद्ध सपाह दुरंत दुबाह सुसास नह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान पर एक मन मै कर पर्वत पंख लेना हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर पार बड़े बरियार अभिचार है सार की तार पशैया तोर देश मिलिंद मवासन माते के जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सो बात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सबको सिर नायक जाच अनेक सो एक देवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जाय तुन पापन के बपुंज खपेंगे सास मुह प्रसन्न फिरै जग सतर सबैव लोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरा तप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजान गदान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पति अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पद के प्रस है पग ते नर फेर न दे तरेंगे कहा पहयो जो दो लोचन मूंद का बैठ रहे हो भक्तिहन लगायो नाथ फिर लिए सात समुद्र लोग गए ऊपर लोग वाय उबास की उबखियान सो बैठ का ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहूं सुन ले हो सब जन प्रेम की उतन ही प्रपायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग करे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दसा मैं काहू पिशाह को शीस निवायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तहायो कूर किरिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो कूर क्रिया और जो सभी जग श्री

एक कहे मत एक ना मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सब भेद कहे हम एक ना जान्यो।

हर सेती मन रव रहया, सच्चे रहया समाए, नानक हों बलिहारी तिन काओ, जो चलन सतगुर पाए, महला तीजा बिन शब्द शुद्ध न होवई, जे अनेक करे सिगार, पिर की सार न जानई, दूजे पाए प्यार सार।

खंड सत्य ब्रह्मांड सत्य तेरे लो सत्य का सच्चा तेरे करण सर्व विचार सच्चा तेरा अमृत सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान।

तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्णन न सकूं।

दर्शन परसै गुरु कै जनम मरण दुख जाय सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ सलोक महला तीजा गुर सेवा ते सुखी उपजाए फिर दुख ना लगै आए जमण मरण

राष्ट्रपति कमन मूलते कमन दिष्टानी घर बगन में जिन्हें पर जोबन भोजन सुख सूद मुख प्याओ बैठ को दैन बख्श लियो तो नानक सीजे सुत प्रात मीत बंता संग हसे सुखदाई पवन पावक मुल्ला सगल समग्री संग साथ बसा त्याग अवर संग रचना नानक काड़ लेहो प्रवापे

एक कर अनब कोट गवावै तो मुड़ा कह का करे ताको कीजे सर नमस्कारा सर्व सुख ताहू मन उठा सर्व थोक नानक तिन पाया अगणित खात पीत बरते आनंद उलास अज्ञानी मन रोस करे बहुर उसका विश्वास न होवे प्रभु की आज्ञा माने माथे नानक साहिब सदा दयाल सर पर होवत जान अनेत ओ बिनसे ओ मन पछतावे लपट रहो ते अंध अंधार ताको हाथ न आवे के कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या काम क्रोध विकराल रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या आपस ऊपर करत गमान मिथ्या हस्त पर दर्व को हिर है मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद मन पर लोभ लवावे मिथ्या बास लेत बेकारा सफल दे नानक हर हर नाम ले साच बिना कह होवत सुच्चा ताके ज्यों किरपन के नरार्थ दान नानक ताके बल बल जाओ मन नहीं प्रीत मुखो गुण लावत बाहर पेख न काहू पीन आवत जावत जन्मे मरे जो तुम पाने तिन प्रभ जाता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने आपे आप अब करत नवेरा उपाव स्यान सगल ते रहत आवित लाए सेवक जिस कृपा करी निमख निमक

0: अवतार संत के दुखन जमते नहीं छूटे, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन शोभा तेहीन, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए, सत्संग निंदक पी तरे, संतन के दुखन ला, संत के दुखन त्रिक जोन किरमाए, संत के दुखन सबको छले, संत के दुखन नीच निचाए,
1: मॉनिटर
0: संत का निंदक टिकन ना पाए, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक को सदा वियोग, नानक संत भावे ता उसदा पी होए मोग, संत का दुखी किसे का नहीं
1: मित्र,
0: संत के दुखी को सब त्यागे,
1: वाहिगुरु
0: संत की दुखना सुख ते डरे, नानक संत पावे ता लय मिलाए, संत का दुखी किसे काज ना पहुंचे, संत का दुखी उजड़ पाइए,
1: वाहिगुरु
0: ज्यों सास बिना मृतक की लोथा, आपन बीज आपे ही खाहे, नानक संत पावेता लय उबार, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, जो पावक इंधन नहीं त्रापे, जो बुआर तिन खेत माही दोहेला, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, नानक ज्योतिष पावे सोई थिया, संत के दुखी को दरघे मिले सजाए, संत का दुखी न मरे न जीवाइये, संत का दुखी उड़ चले निराशा,
1: वाहिगुरु वाहिगुरु
0: तैसा कोई वाहिगुरु
1: ये तो ठीक बोल दा बॉस,
0: नानक जाने सच्चा सोए,
1: वाहिगुरु वाहिगुरु
0: सदा सदा तिसको नमस्कार, तिसे त्यागो सास गिरास,
1: वाहिगुरु वाहिगुरु
0: जैसा करे तैसा को थिया,
1: वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
0: वाहिगुरु कृपा करे, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
1: वाहिगुरु
0: भागी नानक जन से श्लोक, तजो सियान पसुर जनो सिमरो हर
1: हर
0: आस, हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए, अष्टपदी देवन को एक है भगवान, बौण न तृष्णा लागे आए, मन के किछ नाही हाथ, तिसका नावरंग कंठ परोए, नानक बिगन न लागे कोए, करमन मेरे सत व्यवहार, सेला कर लह जियो, सा संग बिनसे सब संग, मिटे पाप जपिए हर बिंद, हर दरगे नानक उजल मथा, सदा सदा हर के गुण गाहे, से तनवंत गणी संसार, सदा सदा जानो ते सुखी, एतुत कियो सोजी जाने, नानक तिन्हे निरंजन जानिया, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, सर्व रूप त्यो हर जन रहत, गृहस्त में सोई निर्वाण, तिसकी कटगे जमकी फासा, नानक तिसे न लागे दुख, सो संत सुहेला नहीं डुलावे, ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਿਸਤੇ ਡਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਬੂਜਿਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ ਆਪਨ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
0: ਅਨੇਕ ਥਾਪ ਤਾਰਨ ਤਾਰ ਰਿਓ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਧਰੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ
1: ਗੁਰ
0: ਕਾ ਸ਼ਬਜਾ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵਡਭਾਗੇ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਪੁਰਖੋ ਉੱਤਮ ਕਰ ਮਾਨ
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੇ ਹਰ ਸੰਗ
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
0: ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੇ ਸੋਏ
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
0: ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦਸਟਾਨਾ ਓਏ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਣੇ ਆ

0: मन की तू प्रीत त्याग शरम निरंतर एको सोए गैर कबीर गहीर सुजाना
1: वाहिगुरु
0: कृपा निधान दयाल बख्शंद
1: वाहिगुरु
0: नानक एमे नेहा नराओ
1: वाहिगुरु
0: जो पिछ पाया सोई होग
1: वाहिगुरु
0: जिसका मंत्र न जाने होर
1: वाहिगुरु
0: सर्व थोक सुनिए करता के तब मित पीसर ग्रस्त में भोगी
1: वाहिगुरु
0: नानक तिस पुरखा किने अंत न पाया सगल दे हारे अवगाहे सगल परोई अपने सूत
1: वाहिगुरु
0: जन्म मरे फिर आवे जाए
1: वाहिगुरु
0: जैसा जनावे तैसा नानक जान
1: वाहिगुरु वाहिगुरु
0: नाना पेक करे एक रंग
1: वाहिगुरु
0: प्रभु अविनाशी एक अंकार
1: वाहिगुरु
0: पूरे हो पर सब ठाए
1: वाहिगुरु
0: अपनी कीमत आपे पाई जप जप जीवे नानक हर नाम नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान
1: वाहिगुरु
0: नाम के तारे सगलाकार
1: वाहिगुरु
0: नाम के संग उतरे सुन श्रवण चौथे नानक तत्पा
1: वाहिगुरु
0: पुरख सत केवल प्रधान सत पुरख समाहे समाणी
1: वाहिगुरु
0: मूल सत सत उत्पत
1: वाहिगुरु
0: जिसे बजाए तिसे सब भली
1: वाहिगुरु वाहिगुरु
0: सा सत नानक गुर ते पाई
1: वाहिगुरु वाहिगुरु
0: सते जन जाके हृदय प्रवेश नाम जप ताकी गत होए
1: वाहिगुरु
0: आपे जाने अपनी मित गत
1: वाहिगुरु वाहिगुरु
0: नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया
1: वाहिगुरु
0: जिन बुझिया तिसे आया स्वाद गुर के बचन पदार्थ लहे जाके संग तरे संसार
1: वाहिगुरु
0: जन के संग एक लिव लागी गोविंद कीर्तन जन गावे
1: वाहिगुरु
0: प्रसाद नानक फल पावे स्लोक।

0: राष्ट्रपति पूजा सत्सत सेवदार
1: वाहिगुरु
0: नाम सत्सत आवनहार आपे गुणकारी
1: वाहिगुरु
0: सुरत सत सत जा सुनता नानक सत सत प्रव सोए करन करावन तिन मूल पछानिया
1: वाहिगुरु
0: तत् ज्ञान ते स्मरक पलटाया
1: वाहिगुरु
0: जिस दे उपजै ते समाही समाना
1: वाहिगुरु
0: ताको पिन न कह न जाई नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: वाहिगुरु वाहिगुरु
0: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
1: गुरु
0: सेवक नाम के रंग सेवक की राखे निरंकारा
1: वाहिगुरु
0: नानक सो सेवक सास सास मारे अपने सेवक की सर पर राखे अपने सेवक को नाम जपाई ताकि कतमित कोई न लाखे प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे नानक सो सेवक दै दिस प्रगटाया पसम करे लश्कर कोट लाखे ताको राख दे कर हाथ जिसते कर्तव्य व्यर्थे जात
1: वाहिगुरु
0: सर्व जिया का राखा सोए
1: वाहिगुरु
0: जप नानक प्रभ अलख वडानी पी अमृते मंतन त्रपिए
1: वाहिगुरु
0: और नहीं दिष्टाया नमो सुखर नाम का संग मंतन नामे नाम समाने कौ नानक जन के सदकाम
1: वाहिगुरु वाहिगुरु
0: प्रभु अपने चो रिहा
1: वाहिगुरु
0: प्रभु अपने का हुक्म पछाने
1: वाहिगुरु
0: दुष्टा गुण का एक न जानो कौ नानक से ही जन पूरे
1: वाहिगुरु
0: मन तन अपना तिन जन दे सो जन सर्व थोक का दाता
1: वाहिगुरु
0: जिसके दशा पाप मिटावे तिस जन की तू सेवा लाग आमन जान ना होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम तिसके संग सिख धरे नानक हर गुणगावी
1: वाहिगुरु वाहिगुरु
0: सेवको गुर सदा दयाल गुर बचनी हर नाम उचरे गुर का सिख बेकार ते हटे
1: वाहिगुरु
0: गुर का सिख वड़भागी है नानक सतगुर सिख को जी नाल समारे गुर की आज्ञा मन में सहे हर हर नाम हृदय सत्यावे तिस सेवक के कार्य रास तिसके होत प्राप स्वामी सो सेवक परमेश्वर की गा जाने अनेक बार गुर को बल जाओ आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता एके आप नहीं कछ परम
1: वाहिगुरु इथो या गल करो एदा
0: नानक ऐसा गुरवड़ भागी पाईए परसन कतनर निर्मर रीत पार ब्रह्म की दरगह गवे मन संतोख आत्म पत्याने अमृत जस्ट पेखे होए संत जिस अवे तिस लय मिलाए सतपुरख पूरन बवेक अगम गोचर प्रभ निर्वाणी त ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਸਿਮਰੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਪਗਟੇ ਗੁਣਤਾਸ ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੇ ਮਨ ਮੇ ਰਾਖੇ ਹਰ ਹਰ ਆਈ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਦੁਖ ਤੇ ਨਾਸੇ ਆਨੰਦ ਨੇ ਲਾਠੇ ਪਾਈ ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮੰਤੇ ਖੈ ਨਸੇ ਸਾ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮਰਾਰੀ ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਾ ਸਰਵਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕੋ ਸੋਏ ਪਏ ਪ੍ਰਗਾ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਤਾਰੀ
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ

पदी पापों ते कहते होता तब बैर ब्रो किस अंक मात तब हरख शोको किसे व्यापत तब मोह कहाँ किस होवत परम नान करने हार न दूजा तब बंद मुक्त को किसको गनी तब नरक स्वर्ग को कौन अवतार तब से सख्त कहो कित ठाए तब कवन निर कवन कत डरे नानक ठाकर अगम अपार तै जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन तब जमकी त्रास कहो हो किस होए तब चित्रगुप्त किस पूछज लेखा तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा तै बिन मैल कहो हो क्या तोता तै कौन कौ मान कौन अभिमान तै छल शक्त लगत कहो कीस तै किसे पूकम तृप्तावै नानक करते का नाही सुमार तवर कवन माए बा मित्र शत्र पाई तै वेद कतेब कहाँ तब सगन अब सगन कहाँ बेचारे तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा नानक अपनी गत जानू आप से व्यापत माया तै गुण का नाही प्रवेश तै कौन किस आगे चिंता तै कौन कथे कौन सुनने हारा नानक आपस को आपे पहुँचा तह गुण में किन्नो विस्तार को नरक को स्वर्ग मिछावत हुम्मे मोह परम पैपार अनेक प्रकार कियो बखियान खेल संकोचे तो नानक एक तै पसरे पसा संत प्रताप उनकी शोभा उन्हों बनी आपे रस भोगन निर्जोग जिस पावे तिस

डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ वाहिगुरु साहिब जीओ गौड़ी सुखमनी महला पंजवा श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद याद गुर ए नमः जुगाद गुर ए नमः सतगुर ए नमः श्री गुरुदेव ए नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो सिमरो जास बिसम पर कै नाम जपत अगणत अनेक वेद प्राण सिमरत सदाखर कीने राम नाम के आखर किनका एक जिस जी बसावै ताकि महमा गनी नाया मैं कांखी के दर्श तुहारो नानकुन संग मोहे उदारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम राम रहाओ प्रभ का सिमरन गर्भ न बसै प्रभ का सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै प्रभ कै सिमरन पौ न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै प्रभ कै सिमरन साधकै संग सर्ब निदान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद सिद नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ शनानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन हुए सो भला प्रभ कै सिमरन सफल फला से सिमरे जिने आप सिमराए नानक ता कै लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा प्रभ कै सिमरन उदरै मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब के सुझै प्रभ कै सिमरन नाहीं जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूरन आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहे समाए।